0: हाम्रो भागीरथी सापकोटाजी एकपटक ताली बजाएर स्वागत गरौं। कणेलजी भागीरथी कणेलजी अनि हाम्रो महासचिव आदरणीय राम प्रसाद पोखरेलजी उहाँलाई पनि सम्मानको साथमा सम्बोधन गरे। एउटा भजन सुनौ अनि त्यसपछि बाँकी कुरा गरौंला।
1: हरि सबैले गाउनु होला है।